मम्मा मम्मा बाप्पा दिया था अन्ना ने पार्सल मम्मा ए आहरे मम्मा दें तैयार करी हादिया है अब हाँ खांडा लवा

0: المتقين.
1: ما شاء الله آكين هذا ريتش غروان كي والا
0: شكريا
1: مهاتنا غروان كي أمك ترين آكين اللي بونو إم أوفاوري كامي أبكي كوبا
0: آكين اللي بونو إم أوفاوي كامي أبي أكي أصله دهاس فانسويس وانا أهارو كفالاهم بارا تونغ مرفورين إبرنا اللي بون Then aslo eha ufawani then aslo eharu falahu baratun umur furang evana libuni ma then school ge activities tavas libuni wa ehem me ma aslo eme ufawa kamiyab ki hama e
1: Akin Mike Masters imes fanun kine presenting e tere wadewoni
0: presenting ge tere wadewoni aslo then hama mehen best radio presenter program ki then emme kurisuram vesem balaiche then ane program ge tv channel thaves balang then hama tvm emme gina balani then tvm ge presenter unna mms igene vare boda ei then bala then emi hunge e presenting adu hagen aslo mi ge tereyam wade uni
1: ema bodu igen akin presenter ge gotuk fendi danita
0: then mi ummi dukurani hama fennane kama
1: oba akin ge emme favorite presenter ki
0: akin ge emme favorite presenter ki it is me that
1: आखिन कौन कहता प्रोग्राम में एम्मे बड़ा हुशाला ही बनी
0: आखिन एम्मे बड़ा हुशाला ही बनी देंगे ना बावरिया या कुलीगेंग वहाँ के दक्के आगे कॉन्वर्सेशन ने गोता गेंदा प्रोग्राम ता हम बहुत हाल प्रोग्राम में ऐसे देंगे हम हुशाला पेनो वन
1: आखिन ने विस्कल स्पोर्ट्स का शौक रही था
0: अलग बा हम स्पोर्ट्स अब शौक हो रही है दें स्पोर्ट्स के तेरे इन बोलना या हैंडबॉल दें स्कूल का स्लो इंटर क्लास हैंडबॉल और ना थी वह हैंडबॉल के तेरे वादे वोनी दें हम फुटबॉल खोलने
1: आखिर त्यागे ना इतरो हरकत हो गोल मुंकी ने क्यों मैं वक्त देनी
0: असलो इतरो हरकत तक कब वस दुआ होगे यहाँ बड़ो बहन होना का हमें माह मा इतरो हरकत तक निम्माफ वस हम क्या वम वक्त होगे
1: आखिर वर्गी ना फोक किया वर्ण ता
0: फोक किया वर्गी ना दें गिना क्या नी गिरे से फोटन हो
1: कौन कहा लो फोटन के
0: दें स्टोरी फोटन गिना क्या नी
1: खुले वर्ग

0: हंहार।
1: आहरे नूने में बदली फाका एक मुख आहरे ट्रैक शूट पाला फदी
2: नुकरे ने कमते करे आ दीफान में आ
1: आ मड़कुरे मड़कुरे मड़कुरे मड़कुरे दिवस दे ने कमने आदि बुना मादम फिशिंग ऑफिस हवस दे आहरे हेदुन त लागे ओके साड़ी अनो आईडिया
2: सी आते हिरे बो सकरा बेफता
1: आ आहरे बो अबद वे सकराते अन्न के अबदस मोया एनो जियाद बुना गतो जियाद एन मोळो मी हकी तिवर स्मार्ट मी हनो
2: सिया एब विस्नेत सिया तिया बड़ सिंगा कम का हदया के तोले किया कुड़कुड़ कमेक का ए अम्मा कांत बड़ कुरने सिया
1: आहरे आहरे ता दिवस कांत बड़ कुरने में
2: आ सिया सिया हम कांत ता बड़ कुरने ते कुड़कुड़ कमे किहा बड़ को लागे सिया तिओले ने मिहारो
1: ए कुड़कुड़ कमे ता
2: आ बड़ कमे नो है किसिया
1: ओके ए वरक कुड़ कमे को आहरे हम बड़ को लागे मिउलेने ओके एनु एक मुख बुना देन निमुनि पूरी हा कम निमुनि सॉरी
2: कौन सॉरी कौन सॉरी एता कौन कौन सॉरी एता माडू कोब कौन सॉरी एता सिया माडू कोब हम कम में कम का जवाब को रंजे एता कुड़ कुड़ कमे बेस ते हम निमें जे ने हा बड़ हंगरा में कोन दो
1: जियाद शट अप दूर दे आर वा तो अन्नन का मिलने
2: सिया आर मिहने कुड़ कुड़ कमे बस दिया बड़ कोल दा तिवलन की वेगेन है जे सिया सिया मिहर दे ती कोन कमे ती कोरने की वे दर तल दीते सिया सिया दर हुळवा बदा हां ओके होरे हुळवान कमे ने वारुगद कमे के आमा कुड़ कुड़ कमे हमा बड़ कोल दा गंदे कोन कमे तमे ओगाते चार्जर कोंड बस नै कि नोने आ तारी फुलो जिया अति से बैनी त तारी फुलो दे कोटरी आबा दे निदा कि मिता तीन दर फुलो
3: Don't you phone? Don't you phone? Tutta kuranvi.